सत्पाद धूलि भरित स्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गतिरपेक्ष निजान्तरङ्गाः कल्पागमाकल नयाकुलतां लभन्ते श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभा।